0: ये इमकाना
1: नहीं को
2: ऑयल लच रहा होगा ना
0: कितना दे याम
2: ऑयल लच रहा है नहीं को
0: क्या किया हूँ ननो नन सर्विसेज पीपीए
1: हैं अयारे इबुगिनी कितारे नंकाना ना तोड़ दिया कि ननो आ नहीं तो कि ना कौन marketing at pba.org.ki
0: के मैसेज ना कौन ना फेसबुक पेज पीपीए ए ब्रॉडकास्टिंग एंड पब्लिकेशंस अथॉरिटी के पीपीए मेरी एफएम 89.9 के कुपनी को ना ना बंदे तो कि ना कोई रंदे तारे पॉन नंबर ए ओनो वा टेनुआ किया टेनुआ आ किया तो वाना निम्या वा किया के निपुन रोगो ना ना खाऊं ता पीपीए पाई कि निकारी ना तंगी तंगी मुझे हम कहाँ आने ना ना सचिस्टेन बॉक्स पीपीए अरे एक तो रोया इपुकिन
1: वेबमैन